अब रंग फेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ नला विश्वासी चमक बसुगो रंग रंग से हरंग लसी च्यासुमुला जयमसी तथा लासो फ्याफुला नमस्कार स्पार्क माई फेथ तथा नला विश्वासी चमक बसुगो अंक 36 रंगिदा स्वागत मुला ङ वियोग तामाङ तिनी ङ रङ्दा न्यै बरे से मुला रङ रङ्दा हरङ लसी च्यासु मुला थेन्दे रङ रङला बारेरी चुरङबा मनबल कारण तिगा हिन्दा लानन मिगरे से चन्दोला विचार ल आधारी रङला बारे तिगा मनसुबा विशी निर्धारण लमुला थेरङ तसी थेने गदे रङला फिर्क्याबला रूपला आधारी मिगदे प्रभावित लावरी कडा परिश्रम लमुला यदि रङ छामे मुसिला विषम रङ से रंग दा फेशन सेल कौन फैंसी गहना देन मेकअप से सजब लबारी हमशुला थेली चे रंग से जब पृष्ठभूमिला नचा गोइलो इंजीबा बेला हलाईदा रंगला फोटो खिचब लबारी कौनशुला रंग से थे फोटो का दे सामाजिक संजाली पोस्ट लशुला थेली चे रंग से काते दोन संविधान सभा प्राप्त लशुबा मुला चावला लागरी रंग से बारम्बार रंगला पोस्ट का दे च्यामुला यदि रंग रंगला छवि छन्दोसे रङला बारेरे तिगा मनमुला विवाह ताम्री आधारित मुभा विषम रङ रङला बारेरे मुभा विचार बारम्बार जवादेन आजब गुङ्री उत्तर चढाव तसेला सम्भावना तामुला तिग्द विषम मिगादेला विचार हाइमाइ भरपर्दो आधे मुला रङ याकर्की मिला रूपी हाला मुसुला विवाह बारेरे वास्तविग्री याकर्की जखिन विश्वासनीय विचार मुला खेन थे विचार रोग्याम हमुला चुरो ला विचार भिन्बा जो ला बारेरी यंगसी चिन्ता लादोला खेन्दे लानन सम्मान लादोला चाचन जब खबर छु हिन्बा कि रंग प्रति परमेश्वर ला विचार हाइमा दमन अद्भुत तमुला परमेश्वर ला नजरी रंग रोला लानन मह बहुमूल्य मुसुला थेन्दे परमेश्वर ला तिंगला लागे प्रिय मुसुला एफिसी एक अध्यायला चार चोखो देन तिगै दोष आरेबा मि शोभाला लागेरी परमेश्वर से ख्रिस्ट देन छ्याम गी सोजी चु जम्बलिङ शोभा भन्दा नछन् धन्बा हिन्न जब परमेश्वर से रङ्दा च्यासु मुला रोसे रङला असफलता देन कमजोरी कदे हमरङ मुसुला परमेश्वर से रङ्दा येशु ख्रिस्टला कासे फन्सुबा रोला धर्मी सन्तानला रूपी च्यासु मुला देन रो प्रतिला प्रेम 100% विश्वास योग्य देन इमानदार मुला दुई कोरन्थी 3:18 यङ जम्मसेन मि अगवना प्रभुला याल देन शक्ति उन्बा मुला प्रभु आत्मा हिन्न ओछे थेग्याम खबा थेनोन यलसे यङ द थे रङमन शोभन छन लानन यङ यलरी होरबन मुला यङ प्रति परमेश्वरला दृष्टिकोण छु हिन्बा कि यङ रोला प्रिय देन बहुमूल्य सन्तान हिन्बा जोदा येशु ख्रिस्ट यम दा तब मुला जब यङ दा परमेश्वरला दृष्टिकोण ग्याम च्यामुला यङ थे छवि सन्द फेरि प्रतिबिम्बित लाला परमेश्वर से यंग फिरी हन्याब लवा प्रेम यंगला तिंग्याम थेनी गदेरा तिंग्री प्रतिबिंबित तमुला थेनी गदे से यम परमेश्वर ल प्रेम रंगमुला थेने अनुभव लवमुला मती 5:18 लक अनि 16 एनी गदे जम्बोलिंग ल बत्ती हिन्ना चुरंग लसी नांगसर से यल तना लव रंग लसी एनी गदे से जेबा गेल लजी उनगो एनी गदेला गेम रंगसी थेनी गदे से स्वर्गरी धन गेवा धन छाबा एनी गदेला परमेश्वर आवाला जय जयकार लगाई परमेश्वर से रंगला बारेरी सुम ताम्री विश्वास लबा सेम तिनी एन सोसुगो मानसिक रूपरी परमेश्वर ल प्रेम देन भलाइरी चिसुगो थेन्दे लि थेलिछ सन्दे गदेपति ज्योतिला प्रभावला रूपरी चमकसुगो ताकि थेने गदे से रंग रंगरी होम्बोन रोला महानता मृङबरी हमला आमेन परमेश्वर से रंगले जीवन री प्रशस्त आशिष पिङ्गै प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमला बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01 खेन्दे लि थेलिछ सन्दे गतिपति ज्योतिला प्रभावला रूपी चमकसुगो ताकि थेने गदेसे रङ रङरी होम्बोन रोला महान्ता मृङबरी हमला आमेन परमेश्वर से रङले जीवन री

0: सीआरबीटी 0144011697
1: महिला आवाज को सीआरबीटी 0144011698
0: पुरुष आवाज को पीआरबीटी 6021338
1: महिला आवाज को पीआरबीटी 6021339।